0: Resistance 104.4 FM.
1: Thank you very much.
2: Mitro, hajaron saal baad, ye apni janta, dharm ki aur karwat badli hai, karwat, abhi khadi hui nahi, khadi to usi din hogi, 30 October ko. उस नए इतिहास के निर्माण करने में बम्बई से ज्यादा धर्म प्रेमी आए, इस नया इतिहास रचे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर का नव निर्माण।
3: आई अपील टू यू, राम ज्योति विल गिव यू ऑल द इंस्पिरेशन नीडेड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द लाइफ। ऑल व्हाट इज नीडेड फॉर बेटरमेंट ऑफ लाइफ इज ओनली राम। इफ देयर इज नो राम, देयर इज नो सर्वाइवल। For that purpose,
4: भारत माता की वो गंदे राम की गाते हैं, वो गंदे राम की गाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे। बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के राम का, बच्चा बच्चा राम का।
5: राम जन्मभूमि एक्चुअली बिलोंग्स टू हिंदूज। It's all Hindu only. We are all Hindu and we are supporter of Hindu.
6: आपको लगता है कि ये राम जन्मभूमि बनेगा?
5: Definitely, 100%.
6: आप क्या काम करते हैं?
5: I am doing my business, oil business.
6: तो आप जाने वाले हैं अयोध्या?
5: Yeah.
6: कौन सी तारीख को निकलेंगे?
5: That depends on my booking.
6: यहाँ से कितने लोग जाएंगे?
5: से वेल नॉट लेस देन 50,000.
7: The Babri Mosque at Ayodhya was built in 1528. About 50 years later.